FM 103 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 सितंबर सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में बजे हैं सुबह के 5:58 और 20 सेकेंड। इसी के साथ ही आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में विहरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4था भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये अभियान 15 सितम्बर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50-50 हजार रूपये की सहायता राशि की घोषणा की है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करेगा। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will address 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in Bishkek, Kyrgyzstan today. The 26th SCO Summit is being held under the central motto, Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity. Mr. Modi is on a two-day visit to Kyrgyzstan to attend the summit. On the first day of his visit, PM Modi engaged in cultural events, paid tribute to Mahatma Gandhi, attended the opening ceremony of the 6th World Nomad Games alongside other world leaders. Mr. Modi held bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin yesterday. During his talk with Mr. Putin, PM Modi pushed for a diplomatic resolution to
3: रासायनिक परीक्षण के लिए मिट्टी के नमूने एकत्रित करने के मुख्य तीन उद्देश्य हैं। पहला तो फसलों में रासायनिक खादों के प्रयोग की सही मात्रा निर्धारित करने के लिए, दूसरा ऊसर और आम्लिक भूमि के सुधार और उसे उपजाऊ बनाने का सही ढंग जानने के लिए, और तीसरी जरूरी बात वो ये कि बाग और पेड़ लगाने हेतु भूमि की अनुकूलता तय करने के लिए। मिट्टी का सही नमूना लेने की विधि के बारे में जो तकनीकी बातें हैं हम आपको बता दें। सबसे पहले तो आप रासायनिक खादों के प्रयोग के लिए नमूना लें। जो भाग देखने में मृदा की किस्म और फसलों के आधार पर जल निकास और फसलों की उपज के दृष्टिकोण से भिन्न हो उस प्रत्येक भाग की निशानदेही लगाएं और प्रत्येक भाग को खेत माने। दूसरी बात, नमूना लेने के औजार जैसे कि मृदा का सफल नमूना लेने के लिए मृदा

0: परीक्षण ट्यूब यानी सॉयल ट्यूब, बर्मा फावड़ा और खुरपे का प्रयोग किया जा सकता है। नमूना एकत्रित करने की विधि भी हम आपको बता दें किसान भाइयों। सबसे पहले तो मृदा के ऊपर की घास फूस आप साफ कर लें। यदि आपको फावड़े या खुरपे का प्रयोग करना हो तो वी आकार का 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा बनाएं। अब एक ओर से ऊपर से नीचे तक 10 से 12 अलग अलग स्थानों जैसे बेतरतीब ठिकानों से मृदा की टुकड़िया ले लें और उन पर सबको एक भगोने या साफ कपड़े में इकट्ठा करें। अगर खड़ी फसल से नमूना लेना हो तो मृदा का नमूना पौधों की कतारों के बीच खाली जगह से लें। जब खेत में क्यारियां बना दी गई हो या कतारों में खाद डाल दी गई हो तो मृदा का नमूना लेने के लिए विशेष सावधानी रखें। एक बात और किसान भाइयों, रासायनिक खाद की पट्टी वाली जगह से नमूना ना लें। जिन स्थानों पर पुरानी बाड़ सड़क हो और जहां गोबर खाद डाली गई हो वहां से मृदा का नमूना ना लें। एक खेत में भिन्न भिन्न स्थानों से तसले या कपड़े में इकट्ठे किए हुए नमूने को सुखा लें। एक खेत से एकत्रित की हुई मृदा को अच्छी तरह मिलाकर एक नमूना बनाएं और उसमें से लगभग आधा किलो मृदा का नमूना लें जो समूचे खेत का प्रतिनिधित्व करता हो। उसके बाद जो जरूरी बात है वो है लेबल लगाना। हर नमूने के साथ नाम, पता और खेत का नंबर का लेबल लगाएं। अपने रिकॉर्ड के लिए भी उसकी एक नकल रख लें। दो लेबल तैयार करें, एक थैली के अंदर डालने के लिए और दूसरा बाहर लगाने के लिए। लेबल पर कभी भी स्याही से ना लिखें, हमेशा बॉल पेन या कॉपिंग पेंसिल से लिखें। सूचना पर्चा भरना भी जरूरी है किसान भाइयों। खेत और खेत की फसलों का पूरा ब्यौरा आप सूचना पर्चा में लिखें। यह सूचना आपकी मृदा की रिपोर्ट और सिफारिश को अधिक लाभकारी बनाने में सहायक होगी। सूचना पर्चा कृषि विभाग के अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। मृदा के नमूने के साथ सूचना पर्चा में कुछ बातों की जानकारी अवश्य दें, जैसे कि खेत का नंबर का नाम, अपना पता, नमूने का प्रयोग, बीज वाली फसल या और दूसरी किस्म हो, मृदा का स्थानीय नाम, भूमि की किस्म, सिंचाई वाली है या बारानी है, सिंचाई का साधन, प्राकृतिक निकास और भूमि के नीचे पानी की गहराई, भूमि का ढलान, फसलों की अदल बदल, खादों या रसायनों का ब्यौरा जिसका प्रयोग किया गया हो, कोई और समस्या जो भूमि से संबंधित हो। इसके बाद जो जरूरी बात है वो है नमूने बांधना। हर नमूने को एक साथ कपड़े की थैली में डालें। ऐसी थैलियों में नमूने न डालें जो पहले खाद आदि के लिए प्रयोग में लाई जा चुकी हो या किसी और कारण से खराब हो। एक लेबल थैली के अंदर भी डालें। थैली अंदर से बंद करके उसके बाहर भी एक लेबल लगा दें। 3 या 5 साल के अंतराल पर अपनी भूमि की मिट्टी का परीक्षण एक बार जरूर करवा लें। एक पूरी फसल चक्र के बाद मृदा का परीक्षण हो जाना अच्छा है। वर्ष में जब भी भूमि की स्थिति नमूने लेने योग्य हो, नमूने अवश्य एकत्रित कर लेना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि मृदा का परीक्षण केवल फसल बोने के समय करवाया जाए। किसान भाइयों, इसके साथ ही हमें कार्यक्रम खेती की बातों से अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: मिट्टी जांच का महत्व एवं तकनीक। अभी आप पूर्व प्रसारित प्रतिमा वार्ता से ये खेती संबंधी कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान।

रावण के साथ श्रीराम की कुटी के समीप पहुंचकर मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लेता है। उस अत्यंत विचित्र और सुंदर हिरण को देख सीता जी के मन में उसकी खाल प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो उठती है। उनके आग्रह करने पर श्रीराम उनकी रखवाली का दायित्व लक्ष्मण को सौंपकर स्वर्ण मृग के आखेट को निकल पड़ते हैं। जिन प्रभु की महिमा का बखान करने में वेद भी असमर्थ हैं, वही एक कपट मृग के पीछे भाग रहे हैं। भागता छिपता मृग रूपी मारीच उन्हें बहुत दूर ले जाता है। अंत में श्रीराम तीक्ष्ण वाण से मारीच की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। मन ही मन श्रीराम का स्मरण करते हुए मारीच घोर गर्जन के साथ लक्ष्मण को पुकारता है। विपत्ति सूचक पुकार सुनकर सीता जी के मन में आशंका उत्पन्न होती है। वह लक्ष्मण की अनुनय विनय की अवहेलना करके उन्हें बड़े भाई की सुधि लेने के लिए जाने को बाध्य कर देती है।

गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस गान का पाठ अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन।

बौद्धिक क्षमता में वृद्धि की चाहत तो सभी रखते हैं, खास तौर पर विद्यार्थी। उनमें कुछ विशेष ललक होती है। ज्यादातर विद्यार्थी किसी ऐसे नुस्खे, ऐसी तकनीकों की तलाश में रहते हैं जो उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा दे। यही सत्य जिंदगी के दूसरे दायरों में नजर आता है। बुद्धिमान हर कहीं बाजी मार ले जाते हैं, जबकि बुद्धिहीन विवशता में हाथ मलते रह जाते हैं। जबकि स्थिति यह होती है कि बुद्धि की क्षमता हम स्वयं बढ़ा सकते हैं। हम निरंतर प्रयास करें, लगातार प्रयास करें, मेहनत करें, तो बुद्धि बढ़ती जाती है। जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? भारतीय विद्याओं के परम विद्वान डॉक्टर गोपीनाथ कविराज के विचार इस संदर्भ में बहुत ही माननीय हैं। जिन्हें भी भारतीय संस्कृति, दर्शन, आध्यात्म, विद्या में रुचि है, उनके लिए गोपीनाथ कविराज का नाम अपरिचित नहीं है। कविराज जी महान विद्वान होने के साथ साथ अनुभवी साधक भी थे और चिंतक भी। उन दिनों जब वे प्रोफेसर थे, उनसे एक छात्र मिला। वो बहुत ही दुखी था, निराश, हताश था।

प्रभावित होकर गोपीनाथ जी ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। निर्बुद्धि कालिदास को परम बुद्धिमान कवि बना देने वाली जगत माता तुम्हें भी बुद्धि अवश्य देंगी, बस इसके लिए तुम्हें कुछ प्रयास करने होंगे। कविराज के इन शब्दों को सुनकर उस छात्र के अंदर आशा और उत्साह का संचार हो गया। पंडित गोपीनाथ जी से उसने कहा, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए पहला उपाय क्या है? उन्होंने कहा, स्थिरता। ध्यान रहे, हमारी चंचल वृत्तियां ही हमारे बौद्धिक विकास को रोक देती हैं। इस अवरोध को हटाने के लिए आवश्यक है कि तुम धीरे धीरे ही सही क्रमिक रूप से निरंतर 3-4 घंटे बैठकर पढ़ने का अभ्यास करो। शरीर के स्थिर होने पर मन भी स्थिर हो जाएगा, साथ ही बुद्धि भी विकसित होगी। और इसी क्रम में दूसरा बिंदु है एकाग्रता। इसके लिए जरूरी है अपने अध्ययन विषय पर एकाग्र बन जाओ। न समझ आने के बावजूद भी उसे पूरी एकाग्रता के साथ समझने की कोशिश करो। निरंतर एकाग्रता का अभ्यास तुम्हारी समझ को विकसित करेगा। और इसी के साथ है जिज्ञासा, यानी जानने समझने की जागरूकता। तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होगी तो पढ़ने की लालसा बढ़ेगी, तुम अधिक जानना चाहोगे। और इसी के साथ ही आवश्यक है बुद्धिमानों की संगति। तुम्हारी संगति जैसी होगी तुम ऐसे ही बन जाते हो, इसलिए अच्छे लोगों की, बुद्धिमान लोगों की संगति रखो तो तुम्हारे विचार भी उन्हीं के समान हो जाएंगे। और इसी के साथ है निराशा को हटा देना, आशावादी बन जाना। तुम आशावादी बनोगे तो तुम्हारे बुद्धि का विकास हो ही जाएगा। इसलिए निरंतर प्रयास करो, एकाग्र हो, आशावान बनो, अच्छे लोगों की संगति करो। ऐसा करने से बुद्धि विकास होगा। वह छात्र बहुत ही खुश हुआ और उसने ऐसा ही किया। आगे चलकर उसे हर क्षेत्र में सफलता मिली। कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि विकास के लिए आवश्यकता है एकाग्रता की, प्रयास की और सतत प्रयास की। ऐसा करने से हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारी बुद्धि का विकास होता है। इसलिए जो भी कार्य आप करें उस पर एकाग्र हो जाएं। लेकिन आज के समय में चिंता की यह बात है कि लोग एकाग्र नहीं हो पाते हैं, मन चंचल रहता है, वो जल्दी से जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, इसलिए छोटा रास्ता अपना लेते हैं और इसी में उन्हें बार बार असफलता भी मिलती है। इसलिए सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है, स्थिरता की आवश्यकता है। स्थिर रहिए, आगे बढ़िए, आपकी बुद्धि का विकास होगा।

सतत प्रयास ही सफलता की कुंजी। अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, आलेख और वाचन स्वर था निर्मला तिवारी का। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। समय हो चला है मित्रों भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज़ में, हरिओम शरण और साथियों से श्री हनुमान चालीसा।

0: अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण और साथियों को। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए आपको डॉक्टर कुमार विजय आनंद, आकाशवाणी रांची से प्राप्त यह भेंटवार्ता है, लकवा कारण एवं निदान। तो आइए सुनवाते हैं पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता।
1: नमस्कार दोस्तों, बदलती जीवन शैली ने हम लोगों को काफी प्रभावित किया है और बहुत सारी बीमारियां भी आने लग गई हैं। एक ऐसी ही बीमारी है पक्षाघात, जिसे हम लकवा कहते हैं या हम पैरालिसिस भी कहते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि लकवा होने का कारण क्या है, कैसे हम इन चीज़ों से अपना बचाव करें और यदि इस तरह की बीमारी हो जाती है तो इसका उपचार कैसे किया जाता है। आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर कुमार विजय आनंद। आप न्यूरो फिजिशियन हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। बदलती जीवन शैली के कारण बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे धीरे शरीर के अंदर प्रवेश करती जाती है। एक ऐसी बीमारी है पक्षाघात, जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं या स्ट्रोक भी कहते हैं या लकवा भी कहते हैं। ये लकवा होने का क्या कारण है डॉक्टर साहब?
2: देखिए, ब्रेन स्ट्रोक जिसे सामान्य भाषा में लकवा या पैरालिसिस कहते हैं, ये मुख्यतः दो तरह का होता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक और एक इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक अगर हम सामान्यतः समझाएं तो वो है कि जो खून की नली जो ब्रेन को सप्लाई करती है उसमें अचानक थक्का जम जाता है, जिससे रक्त का प्रभाव ब्रेन के किसी एक हिस्से में कट ऑफ हो जाता है, उसका बाधित हो जाता है, उसके कारण मरीज को लक्षण होते हैं। और जो हेमरेजिक स्ट्रोक है, जैसे ब्रेन हेमरेज सामान्यतः आम भाषा में लोग बोलते हैं, उसमें खून की नली में रप्चर कर जाती है, फट जाती है और खून का हिस्सा बहकर एक थक्का जम जाता है ब्रेन के एक हिस्से में और उसके कारण प्रॉब्लम होती है। दोनों ही स्ट्रोक में जो लक्षण होते हैं वो अचानक उत्पन्न होते हैं। मरीज को अचानक किसी एक तरफ हाथ या पाँव में कमजोरी होने लगती है, आवाज़ में लड़खड़ाहट होती है, फेस का टेढ़ापन हो जाता है, चलने में बैलेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, दिखाई देने में प्रॉब्लम हो सकती है, दृष्टि में उसको असुविधा हो सकती है। तो ये सब लक्षण स्ट्रोक के हैं और ये अचानक उत्पन्न होते हैं मरीज में, सडन

0: होता है इनका। तो ये इन सब लक्षण को पहचानना जरूरी है, इसके बारे में सोसाइटी को अवेयर करना इम्पोर्टेंट है। और इसलिए भी कि अगर मरीज को जितनी जल्दी उपचार मिले उतना ही मरीज की जान को हम बचा सकते हैं, या जो डिजेबिलिटी है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी फैमिली मेम्बर्स में किसी को स्ट्रोक के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, उनको अगर फैमिली मेम्बर्स जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो जल्द पहचानें और मरीज़ को हॉस्पिटल लेके जाएं और उनका उपचार तुरंत स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए, तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। या और जो उसके आउट कारण डिजेबिलिटी होती है, जो विकलांगता आती है, उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको उसकी रिकवरी अच्छी होती है जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा।
1: डॉक्टर साहब, ये जो आप लक्षण बता रहे हैं, इस लक्षण के कितने समय बाद इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है?
0: नहीं, जैसे ही मरीज को पक्षाघात का अटैक होता है, लक्षण इमीडिएटली स्टार्ट होते हैं।
1: अच्छा,
0: तो अगर इमीडिएटली स्टार्ट होने पर अब उसकी पहचान कर उसको अगर तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं और उनका उपचार अगर तुरंत शुरू हो, तो उतना ही मरीज को फ़ायदा मिलता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं, इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स। एज उनमें एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है, बढ़ती उम्र के कारण लकवा होने की जो रिस्क है वो बढ़ती जाती है। दूसरा है जो और बीमारियाँ इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इनके कारण स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ता है। साथ में जो जीवन शैली की बात की आपने, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट है, तनावपूर्ण जीवन हो गया है आजकल, जो लाइफ है बहुत फास्ट हो गई है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव लाइफ है, उसमें तनाव काफ़ी बढ़ गया है, तो तनाव को लोग मैनेज नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते, वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। खान पान का जो है वो जंक फूड का लेना, खान पान की जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है, हेल्दी डाइट है, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, स्प्राउट्स है, इनकी मात्रा देख रहा हूँ कि
1: कम होती जा
0: कम
1: रही
0: होती
1: है।
0: जा रही है, और लोग जंक फूड्स और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा उनका रुझान रहता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, लोग योगा, प्राणायाम, वॉकिंग और एक्सरसाइज, इसको अपने जो डेली रूटीन में इंकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं व्यस्तता के कारण या किसी और मोटिवेशन की कमी के कारण, तो ये भी इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए। और कुछ लोग हैं जो नशे में इंडल्ज होते हैं, किसी तरह भी तरह के नशे का सेवन, खास करके स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन, ये स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता है।
1: जी, किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हो जाता है और वो नज़दीकी चिकित्सालय जाकर अपना इलाज शुरू करवा देता है, तो जो रोगी है वो कितना प्रतिशत तक ठीक हो जाता है?
0: एक मैं इम्पॉर्टेंट बात
1: जी
0: बताना चाहूँगा, जो इसमें जो मैंने पहले बताया कि स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, तो उसमें जो इस्कीमिक स्ट्रोक है, जिसमें कि खून की नली में क्लॉट हो जाता है और उसमें जो रक्त का प्रभाव बंद हो जाता है, उस स्ट्रोक में एक मेडिसिन है जो हम लोग अगर गोल्डन आवर में दें, जो 4.5 घंटे का होता है,
1: जी
0: अगर मरीज उसके अंदर अस्पताल पहुंचता है और हम लोग वो मेडिसिन उनको दे पाएँ, तो वो जो क्लॉट है वो डिसॉल्व हो सकता है और रक्त का प्रभाव पुनः स्थापित हो सकता है। तो जो इसको रीपरफ्यूजन थेरेपी, थ्रोम्बोलाइसिस थेरेपी कहते हैं। तो अगर हम ये मरीज को दे पाएँ विदिन अ पर्टिकुलर पीरियड, जो जैसे
1: तीन
0: वो
1: से चार
0: गोल्डन,
1: घंटे के अंदर
0: हाँ
1: में।
0: 3.5 से 4.5 घंटे के अंदर,
1: जी
0: तो मरीज़ को बहुत फ़ायदा हो सकता है। हो सकता है कि उस पूरी तरह ठीक हो सकता है या फिर जो सीवियरिटी है वो कम हो सकती है। अगर उसके बाद मरीज़ पहुँचते हैं फिर भी उसमें स्ट्रोक होने के बाद और भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं, स्वेलिंग बढ़ती है ब्रेन में और ब्रेन में जो प्रेशर है वो बढ़ता है, तो उन सब चीज़ों को सही समय पे, उन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट स्टार्ट होना इम्पॉर्टेंट है। तो वो अगर उपचार सही समय पे हम जल्दी स्टार्ट कर पाएँ तो मरीज की जान बच सकती है और हो सकता है कि मरीज बिल्कुल ठीक हो जाए। कितना ठीक होगा ये बहुत सारे और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन जल्दी उपचार मिलने से उनकी डिजेबिलिटी कम होगी, जान बचाई जा सकती है और सुधार होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। अब हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक में जिसमें मैंने बताया कि खून की नली फट जाती है,
1: जी
0: उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन को नियंत्रित रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जब मरीज वैसे मरीज पहुंचते हैं तो उनका रक्तचाप बहुत ही ज़्यादा होता है उस समय, तो इमीडिएटली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितना जल्दी हम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर पाएंगे, रक्त का जो प्रभाव है, जो रप्चर हो के फैल रहा है, उसको हम रोक पाएंगे, और साथ में अगेन जो ब्रेन में और भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उसके चलते जो स्वेलिंग बढ़ रही है वो हम उसको
1: कम कर सकते
0: कम
1: हैं।
0: कर सकते हैं इलाज के द्वारा। कुछ पेशेंट्स इसमें सर्जिकल कैंडिडेट्स होते हैं जिनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खून का थक्का बहुत फैल जाता है, उनमें फिर हम लोग न्यूरोसर्जन को कॉल करते हैं, न्यूरोसर्जरी एक एक, एक एक एक टीम वर्क होता है ये न्यूरोलॉजिस्ट का, न्यूरोसर्जरी का और आईसीयू की टीम होती है। तो फिर हम लोग उसमें उनकी सर्जरी के द्वारा उस क्लॉट को निकालते हैं और प्रेशर को कम करते हैं। तो ये सब चीज़ें जितनी जल्दी हम लोग इसको स्टार्ट करें और डिसाइड करके मरीज को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें उतना ही मरीज के लिए बेहतर होता है।
1: मरीज जितनी जल्दी अस्पताल पहुँच जाए, जितनी जल्दी वह अस्पताल पहुँच जाता है उसकी ठीक होने की चांसेस उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, इस तरह की बीमारी नहीं हो, आजकल हमारे युवा वर्ग भी इस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं, अपनी जीवन शैली को, तनाव को, ब्लड प्रेशर को, अपने डायबिटिक को किस प्रकार कम करें और कैसे अपने एक अच्छी जीवन शैली हम गुजारें ताकि हम स्वस्थ रहें, बीमार नहीं हो।
0: ये बहुत ही अच्छा आपने बात कही है कि सबसे पहले स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर का के बारे में अवेयरनेस होना, उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। फिर आप देखें कि आप में क्या क्या रिस्क फैक्टर है जो आप में मौजूद है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपके फैमिली में किसी को पहले स्ट्रोक हुआ है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो अगर ऐसे मेम्बर्स रहे हैं आपके फैमिली में तो आपको और सजग होने की ज़रूरत है। और अगर आपको साथ में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है तो उसको सही समय पे उसको नियमित रूप से उसको मॉनिटरिंग करें और उसका ठीक से इलाज करें। और अपने जो भी फिजिशियन है और जो भी डॉक्टर हैं उनसे आप रेगुलर उनके फॉलोअप में रहें और उनसे ट्रीटमेंट लें अच्छे से। तो ये एक चीज़ है। दूसरा है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो उसका ठीक तरह से ट्रीटमेंट कराएं। और जो जीवन शैली है लाइक कि हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो आपको तनाव से आपको दूर रखता है, और अच्छी नींद का लेना, और किसी भी तरह के नशे से दूर रहना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अपने जीन्स को पहचानें कि आपके क्या फैमिली में कभी किसी को स्ट्रोक हुआ है तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। आपके अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है तो उसको नियंत्रित रखें, रेगुलर डॉक्टर से मिलें और एक अच्छी जीवन शैली को अपनाएं।
1: जी, अंत में खान पान की हम बात करें।
2: लकवा, कारण और निदान। अभी आप डॉक्टर कुमार विजय आनंद से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। बातचीत कर रहे थे श्री एस के लाल। इसी के साथ ये स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम संपन्न होता है। आइए अब समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: राष्ट्रिय जलनीतेः त्वरितान्वयनाय मार्गं प्रशस्तं विदधाति। पर्यावरण संरक्षणाय स्वच्छता संस्कृतेः प्रसाराय च अद्य जगत प्रकाश नड्डा मन्त्रिणा स्वच्छता पखवाड़ा इत्यस्य शुभारंभो विधीयते। सितंबर मासस्य पञ्चदश दिनांकं यावत् अस्य अभियानस्य माध्यमेन देशे सिंगल यूज प्लास्टिक इति वस्तुभ्यः मुक्तिं प्राप्तुं जनजागरूकता प्रवर्धयिष्यते। उर्वरक विभागेन सर्वेभ्यः कार्यस्थलेभ्यः स्वच्छता नियम पालनाय च आह्वानं कृतम्। प्रशासनेन मणिपुरे जनगणना कार्यस्य स्थगनस्य निर्णयः कृतः। अयं निर्णयः तावत् केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन ह्यः नवदिल्ल्यां मणिपुरस्य वर्तमानस्थितेः मूल्यांकनाय आयोजितस्य उच्चस्तरीय समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षतानन्तरं कृतः। तदनन्तरं मणिपुरस्य उच्चन्यायालयेन निर्देशः दत्तः यत् अग्रिमादेशपर्यन्तं मणिपुरे जनगणना कार्यं स्थगितमेव तिष्ठेत्। भारतेन आर्थिक जगति पुनः कीर्तिमानं रचितम्। अस्य वित्तवर्षस्य अप्रैल जून त्रैमास्यां देशस्य वास्तविक सकल गृहोत्पादः 7.8% अवर्धत। प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यद् वैश्विक समाह्वानानां सम्मुखीकरणं विधाय अपि भारतेन एषा महती उपलब्धिः समर्जिता। चतुर्थः भारत जर्मनी पर्यावरण मञ्चः अद्य नवदेहल्यां निर्वहिष्यते। अस्य मञ्चस्य मुख्यम् उद्देश्यं पर्यावरण संकटस्य जलवायु परिवर्तनस्य च समाह्वानानां सम्मुखीकरणाय द्विपक्षीय संबंधान सुदृढ़ कर्तुम् अस्ति। केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव जर्मन मंत्रिणा कार्स्टन श्नाइडर इत्यनेन सह अस्य सम्मेलनस्य सह अध्यक्षतां विधास्यति। फुटबॉल इत्येतस्यां क्रीडायां एषमः अंडर 20 एशिया कप इत्यस्यां चषक स्पर्धायां भारतेन ह्यः ताश्कन नगरे सीरिया देशम् 1-0 इति अंकांतरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्रों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित के सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की वृद्धि हुई। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद का समाधान हो गया है।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। अमरीका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से लोग अभी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के खिसकने के कारण आई बाढ़ से भुटीकोशी नदी के किनारे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा पन बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बातचीत हुई। बैठक में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर, पीएम कुसुम और पीएम जनमन योजनाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज दो सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा उपयोग वाली बोतलों को बढ़ावा देना भी है। यह अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप दो कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी कि 7:15 पर सुनवाएंगे हम आपको शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग के तहत बांसुरी वादन। कलाकार होंगे के एस गोपाल कृष्णन। सुगम संगीत के कार्यक्रम स्वर सरिता के तहत आप सुनेंगे स्वाति नाटेकर को 7:45 पर। 8 बजे ले चलेंगे आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचारों के लिए। हिंदी अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे और 8:30 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। 8:45 पर अपने स्टूडियो से आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन के तहत कुछ फिल्मी गानी।

जोहार पलामू, सुनेंगे आप यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे। प्रस्तुति स्वर होगा निर्मला तिवारी का, संयोजन करता होंगे श्री प्रशांत गौरव। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन पाएंगे आप सुबह 9:30 बजे। आज भाग संख्या 1362 प्रस्तुत किया जाएगा। 10 बजे हम शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में समाचारों के लिए, और 10:10 से सुनेंगे आप प्रायोजित, क्षमा करेंगे, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के तहत सेहतनामा रंग तरंग। सुबह 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, और यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12 बजे। 1 बजे सुनेंगे आप हिंदी समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी समाचार, और प्रादेशिक समाचार दोपहर 1:10 पर।

1:20 से आप सुनेंगे सुरीला सफ़र विविध भारती के तहत 2 बजे अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हिंदी समाचार 2:15 पर और 2:30 बजे सुनेंगे आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती से सदाबहार नगमे। प्रादेशिक समाचार 2:55 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित होंगे। 3 बजे से पुनः मुंबई से विविध भारती के तहत सुनेंगे आप सखी सहेली कार्यक्रम। 4 बजे एक बार पुनः सुन पाएंगे आप प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होगा। विविध भारती के तहत सुनेंगे आप सैल्यूलाइट के सितारे 4:02 से। प्रादेशिक समाचार शाम 5 बजे पुनः आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित होंगे। 5:02 से आप आनंद ले सकेंगे छाया गीत का विविध भारती के तहत। और शाम 5:30 बजे हम आपको एक बार फिर से जानकारी देंगे कार्यक्रमों की।

युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी का समय होगा शाम 5:30 बजे। इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कार्यक्रम पर और नेत्रदान पखवाड़ा पर नेत्रदान पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम आप सुनेंगे वार्ता मुकेश कुमार शर्मा से, पूर्व प्रसारित यह वार्ता होगी। 6:02 से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। 6:30 बजे सुन पाएंगे आप कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। चर्चा होगी समसामयिक कृषि कार्य पर। आज की बात होगी लत्तर वर्गीय सब्जियों के कीट और नियंत्रण पर। एक सफल किसान गुड्डू कुमार गोंदा मराल गढ़वा से ली गई भेंट वार्ता सुनेंगे आप। मछली पालन और खेती बाड़ी से संबंधित बातचीत करेंगे संतोष कुमार। पशुओं के संक्रामक रोग और निदान पर आज की नसीहत। आज का मौसम विभाग से प्राप्त और आज का बाजार भाव पलामू की मंडी से प्राप्त आप जान पाएंगे। 6:55 पर लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र। 7:00 प्रादेशिक समाचारों का समय है और 7:10 जिले में आजकल। फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक रंग के तहत सुन पाएंगे फिल्मी गाने 7:15 पर हमारे स्टूडियो से। खुला आकाश कार्यक्रम के तहत सुनेंगे काव्य पाठ, स्वरचित कविताएँ इसके तहत प्रस्तुत होंगी और फनकार होंगे नसीम अहमद। 7:45 समय होगा। फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट से के तहत सुनेंगे आप रात्रि 8:00 फिल्मी गाने। देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम देशगान के तहत सुनवाएंगे कुछ देशभक्ति गीत 8:30। हिंदी अंग्रेजी उर्दू समाचारों के लिए शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में 8:45 पर। 9:30 से आप सुनेंगे आज के फनकार कार्यक्रम विविध भारती के तहत आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से और 10:00 प्रस्तुत करेंगे हम फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा के तहत कुछ फिल्मी गाने अपने स्टूडियो से। रात्रि 11:00 शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में हिंदी अंग्रेजी समाचारों के लिए और सभा समापन करेंगे हम रात्रि के 11:10 पर अपने स्टूडियो से। तो यह थी जानकारी कार्यक्रमों से संबंधित। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। समय हो चला है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग का, तो आइए सुनवाते हैं आपको बांसुरी वादन।

अभी आप सुन रहे थे बांसुरी वादन, कलाकार थे KS गोपाल कृष्णन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का राग रंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत सुनते हैं स्वाति नाटेकर को।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत चंद गज़लें स्वाति नाटेकर से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचारों के लिए। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: कंपनियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर नियोलन मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
4: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
4: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
5: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहां तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
2: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
5: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
5: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विकास नापा।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
6: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, DNA परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम DNA पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
7: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केउंझर के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। काशदास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप 2 कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले, यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की जीडीपी सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: One nation, one time, India moves towards self-reliance in timekeeping, reports the Tribune, adding IST to be mandatory time reference from March. Singapore diplomat, Myanmar activist and Bangladeshi aid giver win Max Ace Awards, reports the Indian Express. Messi closes the Argentina chapter, reports Hindustan Times. Football loses part of its soul as legend calls time on Argentine career after failure to defend World Cup crown and death of his father George, writes the Indian Express. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to address SCO summit in Kyrgyzstan's capital Bishkek today. Country's GDP grows 7.8% in the first quarter of the current financial year, beating RBI's projection of 7%. US describes India as dynamic, strong and resilient economy. New Delhi rejects Court of Arbitration award on Indus Water Treaty. Nepal rescuers blast hillside in search of hydropower workers as families wait anxiously. And Lionel Messi announces retirement from international football, ending legendary 21-year career with Argentina national team. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
4: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड और बिहार के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर हुआ समझौता। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हुई बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र। संथाल परगना में घुसपैठ की जांच और डिटेंशन सेंटर की मांग। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर का दो दिवसीय धनबाद दौरा। मुरडीह कोल बेड मीथेन परियोजना का किया निरीक्षण। अक्टूबर 2027 से गैस बिक्री की तैयारी। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में 6 सितंबर तक इंजीनियरिंग और सिग्नल कार्यों के लिए रोलिंग ब्लॉक। टाटानगर गोमो सहित कई रूटों की प्रभावित रहेंगी ट्रेनें। खूंटी सिमडेगा समेत राज्य के 9 जिलों में आज बहुत भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस समझौते के तहत बिहार को 5.75 एमएएफ और झारखंड को 2.0 एमएएफ जल आवंटित किया गया है। इससे झारखंड के पलामू गढ़वा सहित आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल बंटवारे के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया।
1: नदी में बहते हुए पानी को लेकर आज हम और हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के साथ जो सोन नदी के ऊपर बहने वाले पानी में जो हिस्सेदारी होगी वो कितनी होगी। एक लंबे समय से चले आ रहा ये विवाद अंततः अपने मकाम पर पहुंचा है और ये जरूरी है कि हम सब मिलकर एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी लेते हुए इन समस्याओं का समाधान करें।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव पर चिंता जताई है। उन्होंने 2019 से 2024 के मतदाता आंकड़ों का हवाला देते हुए पाकुड़, राजमहल, लिट्टीपाड़ा सहित 14 विधानसभा क्षेत्रों में एक विशेष समुदाय की वृद्धि दर अन्य की तुलना में काफी अधिक होने का दावा किया। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी और आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और इसमें राजनीतिक संरक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने केंद्र के पर्यवेक्षण में विशेष अभियान, खतियानों का सत्यापन और संथाल परगना में डिटेंशन सेंटर बनाकर घुसपैठियों की पहचान कर निर्वासन की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन HMIS ICU CCTV डैशबोर्ड और HRIS सहित विभिन्न डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और डिजिटल पेमेंट की सुविधा 15 दिनों के भीतर शुरू करने तथा राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग की ओर से राजधानी रांची में कल से मतदाता पंजीकरण तथा मतदाता पंजी विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि वोटर रजिस्ट्रेशन और वोटर रजिस्टर विषय पर होने वाले इस सम्मेलन के लिए अब तक 59 रिसर्च पेपर प्राप्त हो चुके हैं।
2: इंडिया में कितना भी इंस्टीट्यूशन है, सभी के हम लोग को प्रचार करते हुए उसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए था। उसमें अभी 59 पेपर्स प्रेजेंटेशन हो रही है। राकेश वर्मा सर है, वो आएंगे, आपका डीजी ट्रिब्लेडियम आएंगे, साथ में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी इलेक्शन मैनेजमेंट है इलेक्शन कमीशन का, वहां से भी ऑफिसर्स लोग उसी में पार्टिसिपेट करेंगे।
0: लातेहार में जिला प्रशासन और DMFT फंड के सहयोग से किसानों द्वारा उत्पादित प्रसिद्ध जीरा फूल चावल की 6.70 मैट्रिक टन खेप को गुड़गांव दिल्ली के लिए रवाना किया गया। उपायुक्त संदीप कुमार, उप विकास आयुक्त सैयद रियाज अहमद और DPM JSLPS संतोष कुमार ने समाहरणालय परिसर से वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महुआडांड FPC के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसान से पर भेजी गई इस खेप का उद्देश्य किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना, उनकी आय बढ़ाना और जीरा फूल चावल को व्यापक बाजार और पहचान दिलाना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार तरुण कपूर दो दिवसीय दौरे पर धनबाद स्थित BCCL पहुंचे, जहां उन्होंने कोयला भवन में कंपनी के उत्पादन, डिस्पैच और भविष्य की योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री कपूर ने पुटके स्थित मुनिडीह में कोल बेड मिथेन ब्लॉक 1 परियोजना का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत में तरुण कपूर ने बताया कि कोल बेड मिथेन गैस का इस्तेमाल भविष्य में CNG और घरेलू गैस के तौर पर किया जा सकता है।
3: हमारे यहाँ कुछ ही जगहें हैं जहाँ पे मीथेन गैस है, कि ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के दायरे में आती है कि वही करेंगे, परंतु अब कोल इंडिया को भी ये अधिकार दिया गया है कि जहाँ भी उनके कोल फील्ड में गैस निकलेगी वो गैस निकाल सकते हैं, और गैस जो है वो पाइप में डालनी है, पाइप में डाल के फिर वो घरों में भी यूज हो सकती है और CNG की तरह गाड़ियों में भी इस्तेमाल।
0: केंद्र सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
4: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है, और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में 6 सितंबर तक इंजीनियरिंग और सिग्नल कार्यों के लिए रोलिंग ब्लॉक के कारण टाटानगर गोमो सहित कई रूटों की ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इस अवधि में आसनसोल आद्रा, आद्रा मिदनापुर और आद्रा विष्णुपुर मेमू रद्द रहेंगी, जबकि गोमो चक्रधरपुर एक्सप्रेस और चक्रधरपुर गोमो मेमू महुदा तक ही चलेंगी। खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस 2, 5 और 6 सितंबर को आद्रा में शॉर्ट टर्मिनेट होगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है। मौसम। खूंटी, गुमला, सिमडेगा समेत राज्य के 9 जिलों में आज बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों के लिए भारी बारिश, वज्रपात और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। सोन नदी जल बंटवारे की खबर को रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान के शब्द हैं, झारखंड और बिहार के बीच 25 साल पुराना सोन नदी जल विवाद खत्म। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मानसरोवर गए पोटका के दंपति नेपाल में लापता। प्रभात खबर की सुर्खी है, मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को कहा अलविदा। दैनिक जागरण लिखता है, सिविल जज परीक्षा रद्द करने के मामले की सुनवाई एकल पीठ में होगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। झारखंड और बिहार के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर हुआ समझौता। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हुई बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र, संथाल परगना में घुसपैठ की जांच और डिटेंशन सेंटर की मांग। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर का 2 दिवसीय धनबाद दौरा, मुनिडीह कोल बेड मिथेन परियोजना का किया निरीक्षण, अक्टूबर 2027 से गैस बिक्री की तैयारी। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में 6 सितंबर तक इंजीनियरिंग और सिग्नल कार्यों के लिए रोलिंग ब्लॉक, टाटानगर गोमो सहित कई रूटों की प्रभावित रहेंगी ट्रेनें। खूंटी, सिमडेगा समेत राज्य के 9 जिलों में आज बहुत भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब

17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।